0: 那这次
1: 要去阿寿山
0: 我要去龙马山大喜的
1: 整个水长我落地不多但年底来差别说切死
0: 可是你吧
1: 你今年我那在家去
0: 阿姐咱们在家中马山他还年多少岁咱家的中马的
1: 上个好苦主播我的家们前面的女工马山咱参加个来考试年年还来女婿
0: ये बांगम जाते जाए हो शबे
1: ओ तीमा साबी नंगा लोटे मिंडो
0: अच्छी कल ऐ तारा भी किप्जे
1: नंदा मिंडो या अम्ला
0: ओ ये शोक्से न्यू कला सुधा
1: ओ ना ना सुमे ना चला शक्य आ रोयू
0: कबार चुने बा न्यू कला सुधा
1: तू लेह जी पिके चोवा चला तो ना चुगिं दा शोशन से जुड़े किन्हा न्यू चेस
0: ओ ओ ए 阿加拉浅浅尝试了一次夜擦损的蓝色罗永行
2: 有那朋友的被他读起了个这小事
0: 哦你浅浅的三批图一这人擦钱呢连最新的三口马人啊你给我
2: 让卡拉苏达困作为多少啊
0: 雷斯